0: इनका बच्चा बहुत बीमार था इस धाम में, उन्होंने मन्नत मांगी कि अगर मेरा बेटा सही हो गया तो मैं 3 दिन का इतकाफ करूंगी। वो अपने मुल्क जा रही हैं, इतकाफ नहीं कर पा रही हैं, तो वो क्या करें? उन्होंने
1: भाई का ये सवाल है कि एक औरत का बच्चा बीमार था और उस औरत ने ये मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह ताला उसके बच्चे को शफायाब कर देगा तो वो 3 दिन एतिकाफ में बैठेंगी। अब उसका बच्चा ठीक हो गया, बच्चा ठीक हो गया है, अब वो सफ़र करके जा रही है। याद रखें, अब वो सफ़र करके जा रही है और वो एतिकाफ में नहीं बैठ सकती। याद रखें, नज़र या मन्नत का हुक्म इब्तिदान मकरूह है। इब्तिदान से मुराद यानी कोई शख्स मन्नत या नज़र भी कहते अरबी में, मन्नत मानना चाहता है तो मकरूह है मन्नत ना माने। अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लम फरमाते हैं कि बखील से ही मन्नत को निकाला जाता है। यानी दूसरे लफ्जों में कोई शख्स जब मन्नत मानता तो यूं कहता है, अल्लाह ताला अगर मेरा ये काम हुआ तो मैं ये काम करूंगा, जो इबादत है ये काम करूंगा, चाहे एतिकाफ है, चाहे नफल नमाज है, चाहे उमरा, चाहे भी कोई भी काम, अगर मेरा ये काम नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूंगा फिर। मतलब ये है कि नहीं? इसलिए मकरूह है इब्तिदान। अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लम फरमाते हैं कि बखील से ही निकाला जाता है। बखील है, नहीं करता कोई इबादत, नहीं करता कोई अच्छा काम, जब तक मुसीबत पड़ती थी फिर करता है, तो इब्तिदान मकरूह है। लेकिन अगर कोई मन्नत मान ले, मुनाकिद हो जाए और उसकी वो मन्नत पूरी भी हो जाए, अब उस मन्नत को पूरा करना फर्ज है। अब मसला ये, इस औरत ने अल्लाह ताला के बच्चों को शफायाब अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया है, अल्लाह ताला मजीद उनको सेहत और आफियत अता फरमाए और हर बीमार बच्चों को अल्लाह ताला शफायाब फरमाए। उसे मन्नत माने के 3 दिन एतिकाफ बैठना है। अगर एतिकाफ मस्जिद में एतिकाफ मुमकिन है तब तो एतिकाफ बैठे और अपनी मन्नत को पूरा कर ले। अगर मस्जिद में इंतजाम एतिकाफ का नहीं है ना, वो बैठ सकती है। मदीना में जगह मखसूस है वहां पे, और तो अलग जगह है मुझे नहीं पता, हरम में है जगह अलग से, वो 24 घंटे खुला रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर अलग से जगह है औरतों के लिए और अपने पर्दे का भी वो खास ख्याल रख सकती हैं, अपनी मन्नत को पूरा करें, उन पर वाजिब है, और जाके 3 दिन एतिकाफ पूरा कर ले, अपने सफर को मुअख्खर कर दे, बाद में चली जाए। अल्लाह
2: हु अलम।
1: मक्का में यानी हरम में अगर कोई शख्स एहतिकाफ में बैठा है, क्या वो तवाफ कर सकता है? जी हाँ, तवाफ कर सकता है, कोई हर्ज नहीं। अगर मन्नत पूरी ना कर सके तो फिर वो कफारा दे, उसका कफारा है 6 मिसकीनों को खाना खिलाना, 10 मिसकीनों को खाना खिलाना, 10 मिसकीनों को खाना खिलाना। मिसकीन और फकीर में क्या फर्क है? उलमा का इसमें इख्तिलाफ है। फकीर बाज़ उलमा कहते हैं फकीर वो है जिसके पास कुछ भी नहीं है, या उसके पास तो है लेकिन उसकी अधूरी हाजत से भी कम है। क्या मतलब? कुछ नहीं तो कुछ भी नहीं। अधूरी हाजत, अधूरी जरूरत से क्या मुराद है? यानी उसकी जरूरत है 2000 रियाल, अधूरी जरूरत है 1000 रियाल, उसके पास उससे भी कम है यानी 500 रियाल है। महीने में एक शख्स की जरूरत 2000 से पूरी होती है। जरूरत से मुराद घर का किराया है, खाना पीना है, लिबास है, बच्चों की तालीम है, सवारी है, ये जिंदगी की जरूरियात बन चुकी है, इलाज है, ये सब जिंदगी की जरूरियात है, दवाई लेनी है, ये जरूरियात में आता है। अलगर्ज फकीर कौन है? जिसके पास कुछ नहीं है या जरूरत से आधा से भी कम उसके पास, इसे फकीर कहते हैं।

सन 200 भूल गए 279 फिर ऐसा फरमाते हैं और यही इख्तियार अहले हदीस का है कि इन चीज़ों को इन अहदीस को रिवायत करते जैसा कहें और उन पर ईमान भी लेके आते हैं और उनकी तफसीर किसी वहम गुमान की बुनियाद पर नहीं होता और कैफियत का सवाल भी नहीं किया जाता और यह अहले इल्म का रास्ता है जो उन्होंने इख्तियार किया है, यह उनका मजहब है। अहले ज़ाहिर की जो गलतियाँ हैं, इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं अहले ज़ाहिर की गलतियाँ जो हैं बयान करते हुए कहते हैं, नंबर एक रद्दुल क़यास सहीह, सही क़यास का रद्द करना, ख़ासतौर पर ऐसे नुसूस जिसमें इल्लत का बयान किया गया है, बाद नुसूस में इल्लत होती है यानी सबब होता है इस नस को हदीस को बयान करने का, और वो सबब जो है वो एक बज़ात खुद एक मजबूत चीज़ होती, मजबूत हिस्सा तो होता है हदीस का, उसको अगर नज़रअंदाज किया जाए तो हदीस बेमाना सी हो जाती है। तो उन्होंने क्या किया, क़यास को भी रद्द किया और इल्लत को भी रद्द किया, कोई इल्लत ही नहीं है, बल्कि वो ये भी कहते हैं कि अल्लाह ताला के शरीयत में कोई हिकमत है ही नहीं, सुभानअल्लाह। बहरहाल और ख़ास तौर पे ऐसे इल्लत जिससे मुराद उमूम हो, मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन अल्लाह व रसूलहु, बेशक अल्लाह ताला इन अल्लाह व रसूलहु ينهيانكم عن لحوم الحمر, अल्लाह ताला के प्यार पैगंबर सल्लम आप लोगों को मना करते हैं गधों के गोश्त से, فإنها رجس, गधों के गोश्त रिज्स हैं, ठीक नापाक है। अब रिज्स का लफ्ज़ क्यों फरमाया आप सल्लम ने आखिर में, ये इल्लत बयान आप सल्लम फरमा रहे हैं, सबब क्या है खाने का ना खाने का, सबब क्या है मना करने का, सबब क्या है, क्योंकि रिज्स है। अगर ये यानी सिर्फ खास गधों के लिए है या अगर ये रिजसियत किसी और जानवर में पाई जाए तब भी उसे ना खाओ, क्या ख्याल है, मुराद क्या है असल में, सिर्फ इस जानवर के लिए है या हर वो जानवर जिसमें यह इल्लत पाई जाए, वरना इस लफ्ज़ को बयान की जरूरत क्या थी, अगर सिर्फ ये जानवर मुराद थी तो वहीं से मना कर देते ना कि गधे का गोश्त ना खाओ, बात खत्म हो गई ना। अब इल्लत बयान करने की वजह क्या है, इल्ले ये कि एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो इस मना से ज़्यादा है, मना तो अगर इनहेरिज ना होता कोई मुसलमान खाता गधे का गोश्त नहीं खाता ना, क्योंकि नहीं आ गई मना हो गया है। रिज के बयान करने की वजह क्या, जबकि मुसलमान जो है मोमिन जो है उनके लिए काफ़ी था कि गधे का गोश्त ना खाओ, आप सबको मना करने काफ़ी था, तो रिज बयान करने की ज़रूरत क्या थी, यूँ बेफायदा बयान किया, नहीं इसका फ़ायदा है, यही असल बात है जिसकी बुनियाद पर गधे का गोश्त भी हराम है, क्यों है, क्योंकि रिज से। अब ये इल्लत अगर किसी और जानवर में पाई जाए लेकिन नस ना हो कि इस जानवर को भी ना खाओ इससे मनाए, तो फिर क्या उस जानवर को इस इल्लत की वजह से ये कहा जा सकता है यह भी हराम है कि नहीं, अल बाहर कहते नहीं बस गधे गोश्त हराम है, ये रिसीद किसी और में पाई जाए तो हम नहीं कह सकते क्योंकि हदीस सिर्फ गधे गोश्त में आई है, ठीक है। तो पहली जो गलती थी इमाम क़य्यिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं अल बाहर की यह है कि उन्होंने सिर्फ ज़ाहिर नुसूस को लेते हुए वो क़यास का रद्द किया, यहाँ पे क़यास क्योंकि जो सही क़यास है, क़यास सही हर क़यास नहीं, क़यास फासिद भी होता है, जो क़यास सही है जिसकी शर्तें मरूफ हैं अहले इल्म के नज़दीक उनमें से ये मिसाल है कि इल्लत मौजूद है, असल है, फ़र्अ है, इल्लत एक ही है रिसियत की है, असल गधा है, कोई और जानवर जो है वो फ़र्अ है, अब उस फ़र्अ को इस असल के बराबर कर देना कोई जुर्म है क्या या शरीयत है, याद रखें शरीयत दो मुख्तलिफ़ चीज़ों को मिलाती नहीं, दो एक जैसी चीज़ को जुदा नहीं करती। नंबर दो दूसरी गलती इमाम ज़क़्क़म रहमतुल्लाह फरमाते हैं नुसूस की समझ में कमज़ोरी का होना, ज़ाहिर जो है क्योंकि ज़ाहिर के ज़्यादा उन्होंने अहतमाम किया कि नस को समझने में कमज़ोर रहे, बहुत सारे अहकाम जिनमें दिलालत है वाज़ह दिलालत है बाज़ चीज़ों की उन्हें अल-ज़ाहिर नज़रअंदाज कर देते हैं और सिर्फ़ ज़ाहिर को देखते देखते, क्योंकि उन्होंने दिलालत सिर्फ ज़ाहिर पर उन्होंने मुनहसर कर दी है, जो असल मुराद थी जो असल माना था उस पर ध्यान नहीं दिया, जो बाज़ औक़ात